0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी। लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना। जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो, वहां भी दिल कहने से डरता है। और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्र लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवां विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवां में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: तेरी यादों का कारवां लगातार चल रहा है, तेरे बाद अब ये मेरा हम सफर बन रहा है। वहाँ यादों का कारवां रुकता नहीं कभी, यहाँ सिलसिला हिचकियों का थमता नहीं कभी। दूर होकर भी वो कैसे इतना प्यार कर रहा है, लगता है आज भी वो मेरा इंतजार कर रहा है। और मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। नहीं, मैं डॉन नहीं हूँ, मैं तो हूँ समर। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेकर हाजिर हूँ यादों का कारवां। कैसे हैं सिंगापुर? हमारा नमस्कार नहीं कबूल करेंगे तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या है आप सबका हाल? 2009 और 2010 में आई बॉलीवुड फिल्मों की बेहतरीन यादें और उनके गाने लेकर एक बार मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ। वो तराने जो आपके दिलो जहन में छाए हुए हैं, आज आपके लबों पर नहीं आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। नहीं, नाम समर वैसे अच्छा है, पर आप मुझे सैम, सैमी, कुछ भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसका जिक्र किए बगैर 2009 की बात करना बेमानी होगा। ये वो फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, ऐसा धमाल कि कमाई के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। अब सोचिए, कमाई जब इतनी जबरदस्त रही तो फिल्म लोगों को कितनी पसंद आई होगी। आपने गेस कर ली? नहीं, कमाल करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ तीन बेवकूफों की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थ्री इडियट्स की। कमाल की फिल्म चेतन भगत की मशहूर इंग्लिश नॉवल 5.1 पर बेस्ड ये फिल्म हर मायने में बेहतरीन है। वाकई में बेहतरीन पटकथा, बेहतरीन कॉमेडी, बेहतरीन ड्रामा, बेहतरीन अदाकारी, बेहतरीन म्यूजिक और कुल मिलाकर सब कुछ बेहतरीन। विनोद चोपड़ा प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। मैं मिडास टच बोलता हूं उनको, वो जिस फिल्म को छू लेते हैं वो सोना बन जाती है। और ये फिल्म सिंगापुर इसीलिए सुपर डुपर हिट होते हुए भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई। फिल्म की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली पहली फिल्म बनी थी। जी हाँ, इससे पहले जो फिल्में थी वो बमुश्किल 100 करोड़ का आंकड़ा छुपाती थी। थ्री इडियट्स ने कमाल करके दिखाया और सिर्फ 200 करोड़ ने 400-500 करोड़ रुपए कमाए इस फिल्म में। थ्री इडियट्स में तीन बेवकूफ दोस्तों की तिकड़ी का किरदार निभाया था आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी ने। पता नहीं वो इडियट थे या हम इडियट हैं जो उन्हें इडियट कहने। वैसे मैं आपको बताऊं ये इडियट क्यों थे इस फिल्म में? बिकॉज दे वर द थ्री इंटेलिजेंट डॉक्टर इन ऑपरेशन थिएटर। फिल्म के पहले आपका क्लाइमेक्स याद है आपको? ये इंजीनियर्स डॉक्टर बन जाते हैं। बहरहाल फिल्म बहुत ही कमाल की थी और इसमें थ्री इडियट्स का किरदार निभाया था आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी ने। और इन तीन लीड कैरेक्टर्स को लेकर बनाई गई इस फिल्म में करीना कपूर, बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने अपनी मंझी हुई एक्टिंग का तड़का नहीं लगाया होता ना तो शायद इस फिल्म में कुछ मिसिंग रह जाता। बहरहाल गानों की बात करें तो इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और गाने लिखे थे वेरी टैलेंटेड लिरिसिस्ट एंड नेशनल अवार्ड विनर स्वानंद किरकिरे ने। और इन लफ्जों को संगीत में पिरोया है म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोहित्रा ने। गाने सभी एक से बढ़कर एक हैं। मुश्किल तो ये है कि मैं कौन से गाने आपको सुनाऊं। तो कंप्यूटर जी की हेल्प लेकर इस शो को शुरू करते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई, आप मेरे साथ ही रहेगा सिंगापुर। अभी तो बहुत सी फिल्मों का जिक्र होगा जो 2009 और 2010 में रिलीज हुई थी और इनसे जुड़ी तो आपकी बहुत सारी यादें हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड।

वेलकम बैक सिंगापुर, मैं हूं समर, रेडियो 24/7 लाइव पर यादों का कारवां, जो आज 2009-2010 की फिल्मों के एक बेहतरीन सफर पर आपको ले चलेगा। तो आज जिस फिल्म का अब मैं जिक्र कर रहा हूं वो है पा। 2009 में आई थी ये फिल्म पा। ये फिल्म थ्री इडियट्स की तरह से बहुत ज्यादा नहीं चली, बहुत ज्यादा कमाई नहीं की इसने, लेकिन इस फिल्म की सोच, इसकी कॉन्सेप्ट, अदाकारी और कुछ लीक से हटकर करने की कवायद ने दर्शकों के दिल में एक अलग ही जगह बना ली। पा उन्हीं फिल्मों में से एक थी। जी हाँ, बॉलीवुड्स लिविंग लेजेंड बिग बी अमिताभ बच्चन के करियर का सबसे चैलेंजिंग किरदार अगर देखा गया तो वो इसी फिल्म में था। बच्चन साहब ने प्रोजेरिया जैसी बीमारी वाले बच्चे का किरदार इस फिल्म में निभाया था। ओरो नाम का एक किरदार था, और क्या कमाल की एक्टिंग की है बच्चन साहब ने, वाकई मतलब इतनी कमाल की कि यकीन ही नहीं होता कि कोई बुलंदी पर पहुंचा एक्टर एक बच्चे का किरदार निभा सकता है और इतनी खूबसूरती से निभा सकता है, और वो भी ऐसा बच्चा जो उम्र में भले ही 12 साल का हो, और उससे भी बड़ी बात अपने रियल लाइफ बेटे का बेटा बनकर। वास्तव में कमाल के अमिताभ बच्चन, तभी तो वो लेजेंड है, लिविंग लेजेंड। तो आइए उन्हें करते हैं सैल्यूट और कहानी को बढ़ाते हैं आगे। उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह इसीलिए कहते हैं, न जाने कितने ही नामों की पहचान मिली उन्हें। खैर, इस फिल्म में उनकी मां बनी एक्ट्रेस विद्या बालन के साथ की केमिस्ट्री भी दर्शकों के दिलों को छू गई। वेल, कॉमेडी और ड्रामा से भरी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आर बालकृष्णन ने, जिन्हें सभी प्यार से आर बाल्की के नाम से पहचानते हैं, जबकि फिल्म को प्रोड्यूस किया था खुद बच्चन साहब ने, उनके बेटे अभिषेक बच्चन और सुनील मनचंदा ने। फिल्म साल 2009 के आखिर यानी कि दिसंबर में रिलीज हुई थी और ढेर सारे अवार्ड्स अपने नाम कर गई थी। जहां तक बात गानों की है तो फिल्म में 8 गाने दिए गए हैं, जिनमें से एक गाना मेरे पाँव में तो बिग बी की ही आवाज है। सभी गानों को सुरों से सजाया है वेटरन कंपोजर इलैया राजा ने। तो कौन सा सुनाएंगे कंप्यूटर जी? कंप्यूटर जी पर छोड़ देते हैं पा के ये गाने, सिर्फ आपके लिए रेडियो 24/7 लाइव पर। उसके बाद मैं लौटूंगा तो एक और बेहतरीन फिल्म का जिक्र करूंगा जो इसी साल यानी 2009 में आई थी। स्टे कनेक्टेड।

वेलकम बैक सिंगापुर। आप सुन रहे हैं यादों का कारवां मेरे यानी समर के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में साल 2009 और 2010 की फिल्म्स की, उनके बेहतरीन गानों की। तो दोस्तों, साल 2009 में कई फिल्में आई थी जो थोड़ा बहुत लीक से कुछ हटकर कही जा सकती हैं, और ऐसी फिल्मों में एक थी CC2C। जी हाँ, CC2C, अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण की फिल्म चांदनी चौक टू चाइना। इस फिल्म की कई रोचक बातें थी। दरअसल इस एक्शन प्लस कॉमेडी फिल्म को बनाने में अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ था। लागत आई थी 800 मिलियन रुपीस की, और कमाई हुई सिर्फ और सिर्फ 554 करोड़ रुपए की, यानी कि आधे से थोड़ी सी ज्यादा। ऐसा नहीं कि फिल्म बेकार थी, लेकिन कहते ना, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। जी हाँ, पब्लिक ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई तो फिल्म पिट गई। लेकिन हाँ, इसके गानों को बहुत पसंद किया गया, और वैसे गाने ना पसंद करने का तो सवाल ही नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। इस फिल्म में जो गाने हैं उन्हें म्यूजिक से सजाया संवारा है शंकर एहसान लॉय ने, कैलाश खेर, बप्पी लहरी और बोमिया की एक्सपर्ट टीम ने। एक गाना एक्चुअली बप्पीदा ने गाया भी, और वो गाना म्यूजिक भी बप्पीदा ने दिया उस गाने का। कमाल के गाने सभी के सभी। कुल 8 गानों में से 2 गाने तो रीमिक्स हैं, बाकी जो टाइटल ट्रैक है चांदनी चौक टू चाइना, इसके अलावा तेरे नैना, चकलैन दे और सिद्धू, ये 3 गाने जबरदस्त हिट हुए, लोगों ने काफी पसंद भी किया इन्हें। वैसे जिन लोकेशंस पर और जिस तरह से गाने फिल्माए गए ना, उसने वाकई इसमें 4 चांद लगाने का काम किया। और एक बात और जो मैं आपको बताने वाला था, और वो ये कि इस फिल्म का नाम पहले ये नहीं रहने वाला था चांदनी चौक टू चाइना। पहले डिसाइड किया गया था कि इसका नाम होगा मेरा नाम चिन चिन चू या फिर मेड इन चाइना, लेकिन आखिर में ये नाम फाइनल हुआ। तो चलिए, क्यों ना सुन लिया जाए इस फिल्म का कोई बेहतरीन गाना। तो सुन लीजिए, सुनकर लौट कर जरूर आएगा, इंतजार रहेगा आपका। अपनी यादें भी हमसे यूं शेयर करते रहिए हमारे फेसबुक पेज पर आकर। स्टे कनेक्टेड।

0: निकर, दिस इज अक्षय कुमार, 1180 छत्ता मदन गोपाल, परांठे वाली गली, लाल किला, चांदनी चौक, दिल्ली 6। तुहाडे सामने लैके आया एक रोमांचक गाना, सुनन वाले नु 101 रुपए इनाम। सुनो, गौर नाल सुनना।
1: किथे चली है गोभी दा फुल बन के, कुड़िए बदामी बांध करो,
0: पॉप तेरा पॉप चलाओ कंजरा।

0: फसाना। ओ बंद करो ए भाई मियां, चलो चांदनी चौक चलिए, चलो ए बाका पो बंद करो सारा कुछ, चलो चलो।
1: सिंगापुर प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट।
2: 3, 2, 1। Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: एक बार फिर आप सभी मेहरबान कदरदान का स्वागत है साहिबान। यादों का कारवां है शो का नाम। मैं हूं सिंगापुर के एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आपका दोस्त एंड होस्ट समर। और मैं आपको आज लिए चला हूं 2009-2010 के बेहतरीन फिल्मों के दौर में। बहरहाल दोस्तों, ये बताइए कि क्या आप कभी दिल्ली गए हैं, और वो भी पुरानी दिल्ली? और दिल्ली विल्ली जाना हुआ होगा तो उम्मीद करते हैं कि आप चांदनी चौक भी जरूर गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पुरानी दिल्ली और चांदनी चौक की बातें क्यों कर रहा हूँ, अभी तो चांदनी चौक टू चाइना की बात की है। दरअसल दोस्तों, मैं जिस फिल्म की बात करने जा रहा हूँ और जिसके गानों का जिक्र करने वाला हूँ, वो इन्हीं के इर्द गिर्द की बसावट है और वहीं के माहौल पर बनाई गई है। याद आया आपको? जी, बात हो रही है दिल्ली 6 की। जैसा नाम वैसी फिल्म, मेरा मतलब ये फिल्म भी कुछ हटकर रही। वैसे दिल्ली 6 का नाम सुनते ही हम सभी के जहन में दो गाने तो जरूर सामने आ जाते हैं, जिसमें अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर की दिल्ली वाली केमिस्ट्री को खूबसूरत तरीके से फिल्माया गया है। याद आया वो गाना? एक तो वही ससुराल गेंदा फूल और मसकली, आई लाइक इट, आई रियली लव इट। वास्तव में कमाल का कॉम्पोजिशन है इन गानों का। और हाँ, म्यूजिक पता है किसने दिया है? जी म्यूजिक दिया है लिविंग लेजेंड A.R. रहमान साहब ने। कमाल के लिरिक्स प्रसून जोशी के, और इन लिरिक्स को म्यूजिक में ऐसा पिरोया रहमान साहब ने कि हर किसी को ये भा गया। मसकली को मोहित चौहान की आवाज मिली, रहना तू गाना खुद रहमान साहब ने गाया और कमाल गाया। कुल 10 गानों में से एक गाना है नूर, जो रिसाइटल है, जिसे गाया है नन अदर देन बॉलीवुड्स बिग बी। और इस फिल्म की बेहद उम्दा कवाली, मौला मौला मौला मेरे मौला, आई लाइक इट, बहुत ही कमाल की है वो, रूहानी। एक और बात इस फिल्म से जुड़ी मैं आपको बता देता हूँ, और वो ये कि फिल्म के गानों को एक टीवी रियलिटी शो के मंच पर रिलीज किया गया था, और जो फिल्म का साउंड ट्रैक था उसे हर क्रिटिक से दाद मिली थी। वेल, अब इतनी सारी बातें हो गई तो गाना सुन लेते हैं पहले, उसके बाद इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। अब 2010 में ले चलेंगे हम आपको, जब लौटेंगे तो 2010 की फिल्मों का जिक्र करेंगे। स्टे कनेक्टेड।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सिंगापुर शो चल रहा है यादों का कारवां और मैं हूं समर आपके साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। और आज हम आपको लिए चले हैं बॉलीवुड की सदाबहार फिल्मों के 2009-2010 में रिलीज हुई फिल्मों के बेहतरीन सफर पर। जी हाँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि मजा आना शुरू हो गया होगा आपको। और वैसे भी 2009 और 2010 में रिलीज हुई फिल्मों के गाने भी तो ऐसे ही हैं कि जबान पर जब भी चढ़ जाते हैं तो उतरने का नाम ही नहीं लेते हैं। मैंने आपको दिल्ली 6 की गाने सुनाए, तो भाई सिर्फ दिल्ली की बात ही क्यों ना हो। उससे पहले मैंने चांदनी चौक टू चाइना का जिक्र किया, मतलब दिल्ली का जिक्र बहुत हो गया भाई। मुंबई वाले नाराज हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, नहीं क्या? क्यों मैडम? हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। तो जी हम आपको नाराज नहीं करेंगे। अगली फिल्म जो मैं लाया हूँ ना, आपको ध्यान में रखकर ही लाया हूँ, यानी मुंबई वालों का ध्यान रखकर लाया हूँ। दरअसल अब जिस फिल्म का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, वो है मुंबई बेस्ड फिल्म। बात कर रहा हूँ 2010 में रिलीज हुई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की। फिल्म को शुरुआती रिस्पॉन्स कमाल का मिला, पर जो 2-3 गाने थे उन्होंने धमाल मचा दिया। मेरा मतलब है कि फिल्म से ज्यादा प्यार उसके गानों को मिला। अजय देवगन, कंगना, इमरान हाशमी, प्राची देसाई, रणदीप हुड्डा और गौहर खान ने 70s-80s के थीम वाले किरदारों को कमाल का निभाया। रिस्पॉन्स बहुत ही कमाल का रहा, इसलिए आगे चलकर इसका सीक्वल भी बनाया गया। बहरहाल ये जो पहली वाली फिल्म है, ये बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनी है और इसमें कुल 14 गाने, और इन सभी के सभी 14 गानों का म्यूजिक दिया है बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर प्रीतम ने, जबकि इन गानों के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल, नीलेश मिश्रा और अमिताभ भट्टाचार्य ने। वैसे दो गाने तो जबरदस्त हिट हुए, एक तो पीलू ओए होए जिसे गाया है टैलेंटेड सिंगर मोहित चौहान ने, तो वहीं दूसरा गाना रहा तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, जिसे आवाज देकर 4 चांद लगाए राहत फतेह अली खान साहब ने। फिल्म के गाने बहुत ही कमाल के, तो एक काम करते हैं बैक टू बैक 2 गाने सुन लेते हैं इस फिल्म से। सिंगापुर क्या कहते हैं आप? मूड बन जाएगा। आप भी यूं ही अपनी यादें हमसे ताजा करते रहिए। इन फिल्मों से जुड़ी हुई कोई बातें, कोई यादें अगर हैं आपकी तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बस लौट कर आता हूं, आपका भी जिक्र करेंगे। फेसबुक पेज है हमारा, वहां आइएगा। स्टे कनेक्टेड।

सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: सुनिए यादों का कारवा विद समर। याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक सिंगापुर। आज समर लेकर आया है एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें है 2009 और 2010 में खिले फूल। मेरा मतलब है आज आप सुन रहे हैं 2 सालों में रिलीज हुई फिल्मों के बेहतरीन गाने। जी हाँ, कह सकते हैं कि गानों को रिकॉल किया जा रहा है यहाँ पर। बहरहाल अब बात करते हैं चुलबुल पांडे की, जो रज्जो का दीवाना हो चला है, उसे दिल दे बैठा है। तो वहीं छेदी सिंह चुलबुल की जान का प्यासा बना हुआ है, और मक्खी चुलबुल का सौतेला भाई, उसका क्या? आप सोच रहे होंगे यार क्या हो गया समर, लेकिन कुछ तो जरूर होंगे जो समझ गए होंगे। जी समर का इशारा है, हाँ जनाब समर का इशारा है 2010 में रिलीज हुई सुपर डुपर हिट फिल्म दबंग की ओर। जी हाँ, वही दबंग जिसे लोगों ने इतना पसंद किया कि चुलबुल पांडे का किरदार निभाने वाले सलमान खान को दबंग खान का ही नाम दे डाला। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? वैसे सिंगापुर जितनी धांसू ये फिल्म है, इसके एक्शन सीक्वेंस भी उतने ही कमाल के हैं, और इसके गाने धांसू हैं। और ध्यान है वो गाना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ये तो जब भी कहीं पर बजने लगता है मजाल है, जो पांव थिरकने से रुक जाए, गाना सुनते ही बॉडी खुद ब खुद धड़कने करने लग जाती है। मेरा मतलब है कि गाना वाकई कमाल का डांसिंग नंबर है, इस बात से तो आप सभी इत्तेफाक रखते होंगे। सही गाना। और वैसे सिर्फ एक यही गाना नहीं है फिल्म का टाइटल ट्रैक, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, इसके अलावा तेरे मस्त मस्त दो नैन, सभी गाने जबरदस्त हिट हुए। फैज अनवर, ललित पंडित और जलीस शेरवानी ने इनके खूबसूरत गानों के लिरिक्स लिखे हैं, जिन्हें उसी खूबसूरत अंदाज से सजाया है वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक ड्यू साजिद वाजिद ने। बस आप सबकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में धमाल मचा दिया था। जरा गौर से सुनिएगा, दरअसल इस फिल्म को बनाने में खर्चा आया कुल 30 करोड़ रुपए, और कमाई पता कितनी हुई? गैस कीजिए, एक अंदाजा तो लगाइए। नहीं, चलिए रहने दीजिए, भारी अमाउंट है, गैस करने में समय लग जाएगा। वेल, फिल्म ने कमाए 230 करोड़ रुपए, जो कि छप्पर फाड़ कर कमाई कही जा सकती है। खैर, अभी फिलहाल कमाई वमाई की बात को रखते हैं अलग, और अभी सुन लेते हैं फिल्म के ये गाने। रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर मैं हूँ समर, आपके साथ, स्टे कनेक्टेड।

वेलकम बैक। समर एक बार फिर कर रहा है आपका स्वागत रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आप सुन रहे हैं यादों का कारवां और आज बात हो रही है बॉलीवुड के 2009 और 2010 में रिलीज हुई फिल्मों के जबरदस्त हिट सॉन्ग्स और उनके म्यूजिक की। तो भाई सिंगापुर साल 2010 में ऐसी कई फिल्में आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अभी मैंने दबंग फिल्म का जिक्र किया था, उसका गाना भी आपको सुनाया। दबंग ने तो अपना कोटा पूरा कर लिया, मेरा मतलब जितना खर्चा वर्चा किया था उससे 7-8 गुना की कमाई कर ली। वाकई दबंग में कमाल धमाल मचा दिया था सलमान खान ने। पर हाँ, सल्लू मियां जितना नहीं लेकिन एक चॉकलेटी एक्टर भी अपने लुक्स, अपने अंदाज और अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत रहा था इन्हीं दिनों में, और वो हैं ऋषि कपूर और नीतू सिंह के सुपुत्र साहब रणबीर कपूर। उस टाइम पर रणबीर कपूर के सितारे भी बुलंदी पर थे और साल 2007 से फिल्म सांवरिया से शुरू हुआ उनका करियर ग्राफ कभी ऊपर तो कभी नीचे, किसी ऊंट की चाल की तरह से चल रहा था। सांवरिया के बाद बजनाया हसीनो, फिर वेकअप सिड, फिर अजब प्रेम की गजब कहानी और फिर रॉकेट सिंह। उतार चढ़ाव के इस दौर के बाद जब रणवीर 2010 में एंटर हुए तो उन्हें फिल्म मिली प्रकाश झा की राजनीति। अब ये फिल्म उनके चॉकलेटी और लवर बॉय के अंदाज से कुछ हटकर थी। यहाँ उन्हें समर प्रताप नाम के किरदार में अपने आप को ढालना था और समर का किरदार निभाना इतना आसान नहीं हो रहा सिंगापुर, यू नो। ऐसा किरदार जो राजनीति में अपने पिता की मौत के बाद बिल्कुल नए बंदे की तरह हो। जी हाँ, थोड़ा चैलेंजिंग जरूर था लेकिन रणबीर जैसे कलाकारों के लिए नामुमकिन शायद नहीं था। और जब फिल्म में अजय देवगन, नाना पाटेकर, नसीरुद्दीन शाह, मनोज बाजपेयी और अर्जुन रामपाल जैसे टॉप क्लास मेल एक्टर्स की फौज हो तो रणबीर को अपनी मौजूदगी दिखा पाना बड़ा मुश्किल होता। लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट से इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि उस पर खरे भी उतर के सामने आए। क्रिटिक्स ने भी उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया। चलिए अब बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक की। फिल्म में कुल 9 गाने हैं जिनका म्यूजिक प्रीतम, आदेश श्रीवास्तव और शांतनु मोइत्रा ने दिया है। वैसे 4 तो रीमिक्स गाने, लिरिक्स गुलजार साहब, इरशाद कामिल और समीर के साथ स्वानंद किरकिरे ने भी लिखे हैं। तो चलिए बातें बहुत हो गई, सुन लेते हैं राजनीति फिल्म का ये गाना जो मुझे बहुत पसंद है। इसका म्यूजिक आदेश श्रीवास्तव ने दिया है। मेरा पिया मुझसे बोलत नहीं, आई रियली लव इट। बहुत कमाल है।

2009-2010 का जिक्र हो रहा है आज यादों का कारवां में। मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। तो इन सालों से तो आपकी भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होंगी। आप चाहें तो हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर आकर। आपने जब ये फिल्में देखी तब कैसा माहौल था, कहाँ थे आप, कहाँ देखी, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी किस्से होते हैं जब भी हम फिल्म देखने जाते हैं, एक इवेंट होता है। तो चाहें तो वो मेमोरीज हमसे शेयर कीजिएगा। यादों का कारवां सिर्फ फिल्मों की यादों से रिलेटेड नहीं है, आपकी यादों से है भाई। आफ्टर ऑल ये शो सिर्फ आपके लिए है, है कि नहीं? तो चलिए अब अगली फिल्म का जिक्र कर लेते हैं जो 2010 में रिलीज हुई थी। ये थी ऋषि कपूर द जूनियर की, अगेन मेरा मतलब रणबीर कपूर की ये फिल्म थी। राजनीति फिल्म में उन्होंने अपने किरदार को बखूबी अंदाज से निभाया था। प्रकाश झा की राजनीति फिल्म के लिए अभी क्रिटिक्स रणबीर कपूर को बधाई दे ही रहे थे कि साल 2010 के जाते जाते रणबीर ने एक और कमाल की फिल्म देकर सभी के होश उड़ा दिए। यहाँ वो फिल्म थी अनजाना अनजानी। यहाँ रणबीर को साथ मिला गॉर्जियस एंड सुपर टैलेंटेड प्रियंका चोपड़ा का। वैसे ये कह सकते हैं कि अनजाना अनजानी यूथ ओरिएंटेड फिल्म थी जिसमें रणबीर प्रियंका के बीच की जबरदस्त लव केमिस्ट्री को दिखाया गया था। और तो और कमाल के लोकेशंस फिल्म की जान रही। अमेरिका में पिक्चराइज है ये फिल्म, काफी हद तक यूएसए में इसे शूट किया गया है। लोकेशंस लवली लवली है। वेल, जहां तक म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात है तो इसकी भी जिम्मेदारी यूथ ओरिएंटेड गाने बनाने की एक्सपर्ट विशाल और शेखर के पास थी। और जैसा कि पता था विशाल शेखर की जोड़ी का म्यूजिक है तो कमाल का ही होगा। बस वो हुआ भी, लगभग सभी गानों को बहुत पसंद किया गया। इनमें से कई गाने तो आज भी डिस्कोथेक और पब्स में म्यूजिक लवर्स को थिरकाने का दम रखते हैं। तो फिलहाल तो मैं इस फिल्म से कौन सा गाना आपको सुनाऊं, एक तो टाइटल ट्रैक सुना देता हूं अनजाना अनजानी, और एक मुझे जो बहुत पसंद है नैना लगे बारिशा, क्या कहते हैं आप? अनजाना अनजानी बदल दूं? तो फिर कौन सा? तू ना जाने तेरे आसपास है खुदा। तो कंप्यूटर जी हेल्प करो प्लीज। कहीं जाएगा तो मिस कर जाएगा कि कौन सी थी वो फिल्म। रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर जब मैं लौटूंगा तो एक और फिल्म का जिक्र करूंगा जिसने धमाल मचा दिया था 2010 में, एक बड़ा टैलेंटेड स्टार दिया था हमें। कौन सी फिल्म? कुछ लोग समझ गए, जो नहीं समझे उन्हें मैं बताऊंगा आके। स्टे कनेक्टेड।

करवा। वेलकम बैक। अरे ये क्या करो यार, तुम तो खुद लाइव बैंड बन गए। नमस्कार और स्वागत नहीं करेंगे हमारा? देखिए हम अपने बैंड के साथ लौट कर आए। नाम तो आप जानते ही हैं, समर है मेरा नाम। रेडियो 24/7 लाइव पर आपको एंटरटेन करना है मेरा काम। आज यादों का कारवां के जरिए हम 2009 की फिल्मों का जिक्र कर चुके, 2010 के साल में चल रहे हैं और ये वो फिल्म है जिसका मैंने ट्रेलर आपको दिखा दिया है। नहीं समझे? मतलब जी बैंड बाजा बारात की बात कर रहा हूँ मैं। अब भाई रणबीर कपूर की मैंने बहुत बात कर ली, तो रणवीर सिंह की बात करना भी बहुत जरूरी हो गया कि नहीं हो गया? वैसे शुरू शुरू में मुझे रणवीर और रणबीर में कंफ्यूजन रहता था। आई थिंक मेरे जैसे कईयों को ये कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन वक्त बीता तो हम सभी इन्हें पहचाने लग गए। बात हो रही है फिल्म बैंड बाजा बारात की और ये फिल्म रोमांटिक के साथ कॉमेडी का तड़का थी। रणवीर सिंह के साथ अनुष्का की जोड़ी शानदार लगी लोगों को और क्रिटिक्स ने भी इसे खूब पसंद किया। मुझे तो ये बहुत पसंद आई। वेडिंग प्लानर्स और उनके फील्ड के इर्द गिर्द इस फिल्म को ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिला। फिल्म जितनी अच्छी थी उससे कहीं ज्यादा इसके गाने अच्छे थे और इन दमदार गानों के पीछे रोल रहा म्यूजिक कम्पोजर सलीम सुलेमान का। वैसे वो गाना ना एवं लुट गया, ये तो आज भी बजता हुआ सुनाई दे जाता है और ऐसा लगता है तो हमारी बात कर रहे हैं। चाय में डूबा बिस्कुट हो गया, कुछ जिंदगी ऐसी हो जाती कभी कभी। नहीं तो जी मेरी गारंटी है कि आप भी इन गानों को सुनकर उठकर थिरकने लग जाएंगे। तो दो थिरकने वाले गाने बजा दें आपके लिए। वैसे इस फिल्म का वो गाना भी मुझे बहुत पसंद है, आधा है आधा हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो क्या करें क्या ना करें ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। बैंड बाजा बारात के साथ मैं यहाँ तैयार खड़ा हूँ, लेकिन वो गाने कौन से हैं जो मैं आपको सुनवाऊँ? कंप्यूटर जी प्लीज हेल्प। और आप सुनिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर ये बेहतरीन गाने। यहीं पर मैं लौटता हूँ, इंतजार कीजिएगा मेरा यहीं पर।

0: रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा केजी मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी।
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
2: क्या जी?
3: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाजी, क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

सिंगापुर ये जो हमारा दिल है ना, दिल बड़ा नटखट है, बड़ा ही बच्चा सा है, शरारती है, हर चीज अपने पास लेना चाहता है। कह सकते हैं कि दिल तो बच्चा ही है। नहीं, वैसे वो गाना भी तो है, दिल तो बच्चा है जी, कितना खूबसूरत है गाना। राहत फतेह अली खान साहब की आवाज जो है, वाकई जैसा नाम वैसी आवाज, राहत सुकून देने वाली आवाज है कि नहीं। वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से कर रहा हूं आपका स्वागत। जाते जाते एक और फिल्म का जिक्र करूंगा। 2010 में एक फिल्म आई थी, नाम उसका बताऊं उससे पहले मैं उसकी कास्टिंग आपको बता देता हूं। नसीर साहब थे इसमें, नसीरुद्दीन शाह साहब, अरशद वारसी और विद्या बालन। समझ गए आप, इश्किया की बात कर रहा हूं मैं। गानों के साथ ही फिल्म को भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला। यही तो वजह थी कि लगभग 4 साल के बाद भी, यानी कि साल 2014 में इश्किया का सीक्वल डेढ़ इश्किया रिलीज किया गया था। स्टार कास्ट लगभग पहले वाली थी, लेकिन बस बदलाव यह हुआ था कि विद्या बालन की जगह दो एक्ट्रेस आ गई थी, माधुरी दीक्षित और हुमा कुरैशी। वैसे पहले वाली इश्किया ने कमाई भी अच्छी की है और क्रिटिक्स के रिपोर्ट कार्ड में भी फिल्म पास हो गई, कई अवार्ड्स भी जीते इसने। खैर ये तो बात हुई फिल्म की, फिर से मैं इश्किया के गानों की बात करता हूँ। कमाल के गाने थे फिल्म में, और कमाल के होते भी क्यों नहीं भाई, लिविंग लेजेंड और हम सभी के अजीज गुलजार साहब की कलम चली थी इन गानों पर, और इन शब्दों को संगीत देकर 4 चांद लगाने का काम किया था हिंदी सिनेमा के बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर विशाल भारद्वाज साहब ने। अब बताइए गाने कैसे पसंद नहीं आएंगे आपको। एक और कमाल की बात यह रही कि इश्किया का जो म्यूजिक लॉन्च किया गया था वो साल की पहली तारीख थी, यानी कि 1 जनवरी 2010। महीने भर बाद फिल्म भी रिलीज हुई थी। बाकी दिल तो बच्चा है जी गाने के साथ ही इब्न बतूता गाना भी चार्टबस्टर टॉप की लिस्ट में रहा। खैर अब बहुत बातें हो गई, अब काम करते हैं, इस फिल्म से कुछ गाने आपको सुनवा देते हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत, आपसे फिर मिलूंगा एक और शो में यादों का कारवां के जरिए। अभी चलता हूँ, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए कीजिए वादा कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर सज जाएंगे। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे यहीं पर, मेरा नाम है समर, नमस्कार।

0: सिर्फ वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वॉज अ गर्ल, इफ वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh, man.

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Join

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Your

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: मोहब्बत क्या है?
2: मोहब्बत? मोहब्बत जिंदगी है.
3: मोहब्बत क्या है? क्यों है? कहाँ है?
2: मेरा विश्वास है कि भगवान ने सारे दिल के रिश्ते पहले से ही जोड़ दिए हैं, बस उनका मिलना हम पे छोड़ दिया है. उसने हम सबको जोड़ियों में बनाया है और हर एक के लिए कोई एक जीवन साथी है.
3: जीवन साथी? क्या बकवास है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता.
2: मुझे तो पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बनाया गया है और कभी ना कभी मैं उससे जरूर मिलूंगी.
3: अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे कोई बताएगा प्लीज कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे लिए कौन बनाया गया? मेरा मतलब, क्या वो मेरे नाम का बोर्ड लेकर घूम रही होगी?
0: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
2: और आ गया वो टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन जब हम लड़ाई करने के लिए मैदान में उतरते हैं। गुड इवनिंग। जी हाँ, फ्राइडे है, शाम है, जैसे मंडे की शुरुआत सुबह 7 बजे इस अमेजिंग सी आवाज के साथ में होती है रेडियो मस्ती 24/7 पर। वैसे ही फ्राइडे, जो कि हमारे हफ्ते का लास्ट डे होता है और लास्ट लाइव शो होता है, तो भाई उसकी भी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज से होती है। हैरानी की बात यह है कि मंडे सुबह भी मैं डांट खाती हूँ और फ्राइडे शाम भी आप लोगों से, आधे ज्यादा लोगों से डांट खा के जाती हूँ, बट वेल दैट इज एग्जैक्टली जहां हमारा और आपका प्यार बना रहता है। अ वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू रेडियो मस्ती 24/7 एंड ऑफ कोर्स वेलकम टू मस्ती टॉप चार्ट्स। दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20। बिल्कुल ज्वाइन तो आप कर ही चुके हैं, मुझे पता है, और अब बस 5:01 ऊपर नीचे ऐसा ही हुआ है और आप सोच रहे हैं कि आज क्या मस्ती होने वाली है। सो मस्ती डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि मस्ती की जो सबसे बड़ी मस्ती खोर है वो तो यहाँ पर एट योर सर्विस है। बातें करेंगे बहुत सारी, ढेर सारी, ऑफ कोर्स गाने चलाएंगे टॉप 20, और आज देखेंगे कि टॉप 3-4 गानों में क्या क्या लड़ाइयां होने वाली हैं। वेल, बढ़िया बात तो यह है कि आपके बड़े सारे जवाब हमें आए हैं हमारे इंस्टाग्राम से, जहां पर हमने पूछा गाना नंबर 1 कौन सा होना चाहिए इस बार का। तो वेल, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज, यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। और अगर आपने नहीं रिस्पॉन्ड किया है तो वेल टू लेट एक्चुअली, पर फिर भी जाके ट्राई योर लक, हो सकता है कि फैसला बदल जाए। ऑन रेडियो मस्ती 24/7 is time for गाना नंबर 20, और गाना नंबर 20 की किस्मत खैर मैं क्या ही बताऊं। बिल्कुल उसने भी कभी सोचा नहीं था उसके साथ ऐसा होगा। इस गाने का नाम है सोचा ना था। मेरी दुनिया बन जाए। एंड डोंट आस्क मी क्या हुआ है इस गाने के साथ, यू नो 2 हफ्ते पहले ये गाना पहुंच गया था नंबर 1 पर। जी हाँ, इट्स कॉल्ड सोचा ना था। और फिर पिछले हफ्ते 10 पायदान जिसे कहते हैं गिरा और पहुंच गया गाना नंबर 10 पर। और आज के दिन, जैसा कि मैंने अभी भी बताया आपको, दिस इज गाना नंबर 20। आप में से बहुत से लोगों ने शिकायतें लिखी हमको, और मेरे तक ही नहीं, शिकायतें तो पहुंची मेरी पूरी टीम तक कि रेणुका ने क्या कर दिया, ये कौन सा गाना नंबर 1 पे कर दिया। भाई उसके बाद जो मेरी लगी तो मैंने कहा इसको तो धीरे धीरे खिसकाओ। ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, और वापस आते हैं ये गाना सुन के और बातें करेंगे बहुत सारी, ढेर सारी मस्ती करेंगे ऑन दिस ब्यूटिफुल फ्राइडे। इट्स रेणुका विद यू ऑन रेडियो मस्ती 24/7, इट्स मस्ती टॉप चार्ट्स।
3: Trending song number 20.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। बॉलीवुड फ्लैशबैक।

0: चोर बाजारी। जी हाँ बिल्कुल, पक्की बात है कि चोर बाजारी है। यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर बात कर रही हूँ मैं बॉलीवुड की, क्योंकि ये है बॉलीवुड का ही वीकली काउंटडाउन एंड इट्स कॉल्ड मस्ती टॉप चार्ट्स।
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
0: Masti Top 20 पर आपका स्वागत करने के लिए एक ही है। हाँ, मैं कभी कभी रोकती हूँ, कोशिश करती हूँ कि और लोग भी रुक जाए मेरे साथ शाम को, पर कोई रुकता नहीं है। नहीं यार, क्या करें। खैर, बात कर रहे थे हम चोर बाजारी की। तो चोर बाजारी के चलते मुझे एक बात याद आई कि बॉलीवुड में कुछ चीजें कभी लेट नहीं होती। मतलब या तो एयरपोर्ट लुक्स की बात कर लीजिए या फिर उन पर बने मीम्स की बात कर लीजिए। कभी कभी तो एक्टर्स जो है ना, वो फ्लाइट से भी ज्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं। कभी लगता है कि सूटकेस ने एक्टर को कैरी किया हुआ है। और फिर सोशल मीडिया के डिटेक्टिव्स जो शुरू होते हैं, पूछिए मत। आप कहते हैं ये जैकेट जो उसने पहना है ना, 3 लाख का है। अरे भाई छोड़ ना यार, हम तो 3-3 साल तक एक ही जैकेट पहनते हैं, एंड हु केयर्स फ्रैंकली। बात करते हैं हम एक तरफ सस्टेनेबिलिटी की और दूसरी तरफ हम मीडिया को बुला बुला के कहते हैं, अरे यार ये बंदा एयरपोर्ट पर जा रहा है, जरा इकट्ठा तो हो जाओ, उसके एयरपोर्ट लुक को तो वायरल कर दो। Well, that is गाना नंबर 19। अगर आपको याद है तो ये पिछले हफ्ते नंबर 9 पर था और एकदम से लुढ़क के पहुंचा है नंबर 19 पर। एंड वॉट इज द नेक्स्ट गाना आफ्टर दिस? वाओ, ये था 19 पर और ये पहुंचा है 18 पर आज के दिन में। धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी एज वी कॉल रेडियो मस्ती 24/7 पर बातें करेंगे आउटफिट्स की, बातें करेंगे फैशन की, बातें करेंगे दाल में कुछ काला होने की इन बॉलीवुड। बट दिस फॉर नाउ इज द बैक टू बैक 19 और 18। सुन के आते हैं वापस विद रेणुका, इट इज मस्ती टॉप 20।
2: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 19।

0: सबसे ज्यादा तो फिल्म की कंट्रोवर्सीज की बातें हो रही हैं। जी हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 पर क्या नाम है, है जवानी तो इश्क होना है, मतलब व्हाट इज दिस। रेडियो मसी 24/7 पर रेणुका विद यू, एंड ऑफ कोर्स चल रही है हमारी फ्राइडे शाम की बातें, और फ्राइडे शाम को हम करते हैं ऐसी ऐसी बातें जो सिर्फ और सिर्फ गॉसिप से भरी हुई होती हैं। दैट्स द वे वी रियली वाइंड अप फॉर द वीक, राइट? बट यू नो व्हाट, आई गॉट टेल यू समथिंग वेरी वेरी वेरी एक्साइटिंग। इट इज अबाउट द वन एंड ओनली, जी हाँ, द लायन सिटी चैलेंज। आपने सुना है या नहीं?
1: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे?
2: एक्साइटेड।
3: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text The Lion City Challenge to 9151-8963.
0: जी बिल्कुल, मैं बात कर रही थी द लायन सिटी चैलेंज की। आप जानते हैं कि सिंगापुर में रेडियो मसी 24/7 मसी मीडिया नेटवर्क जब भी कुछ लाता है तो वो कुछ अलग होता है, कमाल का होता है। एंड राइट नाउ हम ढूंढ रहे हैं हमारे खास ऑडियंस जो भी अलग हैं और कमाल के हैं। जी हाँ बिल्कुल, बात कर रही हूँ मैं आपकी। आपको पार्टिसिपेट करना है इस पूरे के पूरे गेम शो में। कम ऑन गाइस, इट्स गोना बी फन, राइट? सो ये दो फेजेस में है। पहले फेज में आप हमें एक व्हाट्सएप भेजेंगे जिसमें आप लिखेंगे लायन, धारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख देना। और उसके बाद हम आपको दो सवाल भेजेंगे, ठीक है? दो सवाल जब हम आपको भेजेंगे, आपको उनके जवाब देने हैं। जैसे ही आपने सही जवाब दिए, हम तक पहुंचाए, तो फिर आप सिलेक्ट हो जाएंगे अगले पड़ाव के लिए, विच इज पार्ट टू। एंड पार्ट टू इज समथिंग लाइक अ गेम शो विच इज गोना हैपन इन द स्टूडियोज ऑफ रेडियो मसी 24/7। वहां पर आप आके बैठेंगे, एक होस्ट होगा, साथ में एक हॉट सीट होगी, और कुछ गप्पे शप्पे होंगी, बीच में कुछ सवाल होंगे, और बस मस्तियां होंगी। ऑफकोर्स यू विल टेक होम सम कैश एंड सम प्राइजेस। सो चलिए चलिए रेडियो मसी 24/7 पर पार्टिसिपेट कीजिए, कुछ जिंदगी में कुछ रंग लाओ यार। बड़े बड़े बोरिंग टाइप हो गए हो आजकल तुम, हैं? चलो अगला गाना कौन सा है? नंबर 17। इसको मैंने रेणुका से भी हटा दिया और मैंने कहा है रुचिका, ओ माय डार्लिंग। गुड इवनिंग एवरीवन।
4: इट्स टाइम फॉर मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: 17 था और 17 पर ही इस हफ्ते भी yes you just heard the first track from Dhurandhar playing on Musty Top Charts for this week. A very good evening and welcome once again. This is Radio Musty 24/7 और मैं रेणुका.
3: Musty Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style.
4: Renuka!
2: जी बिल्कुल. एंड लाइक आई सेड, आजकल मैंने इसको बदल के अपनी फेवरेट बहुत ही प्यारी सी लिसनर के नाम कर दिया है, रुचिका. ओ माय डार्लिंग. अब क्या है भाई, आगे बढ़ते हैं. 17 था, 17 है. जी हाँ, दैट इज मोनिका, ओ माय डार्लिंग, रन डाउन द सिटी, धुरंधर. लेकिन अगला गाना विच इज अ नंबर 16 इज एक्चुअली फ्रॉम अ फिल्म विच इज डूइंग फेयरली अमेजिंग एट द बॉक्स ऑफिस. जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं बॉबी देओल की और साथ ही मैं बंदर की. किसी ने सोचा नहीं था, एक्चुअली शायद उन्होंने खुद नहीं सोचा था, मुझे तो लग रहा था कि ये बंदा डेफिनेटली आएगा तो अच्छा ही काम करेगा और फिल्म भी अच्छा ही करेगी. वेल, क्यों मजा आ रहा है, दैट्स द नेम ऑफ द नेक्स्ट ट्रैक. और मुझे बॉबी देओल से याद आया हाल ही में एक इंटरव्यू, जो कि पूजा भट्ट अपना इंटरव्यू दे रही थी. जी हाँ, और उसमें उनसे बहुत सारी बातें पूछी गई, अपार्ट फ्रॉम यू नो थिंग्स लाइक उनके डैडी के रेगुलर अफेयर्स महेश भट्ट के, फ्रॉम यू नो फ्रॉम द टाइम दैट देर वॉज सोनी राजदान इन हिज लाइफ एंड देन देर वॉज प्रवीण बाबी इन हिज लाइफ एंड वी हर्ड सो मेनी कहानीज राइट एंड येट हिज अमेजिंग रिलेशनशिप जो कि आज तक चला आ रहा है उनकी अपनी पहली पत्नी के साथ में, विच इज पूजा भट्ट्स मदर. बट वेल, द पॉइंट वॉज अबाउट बॉबी देओल एंड अबाउट पूजा भट्ट एंड द वे विद वेरी वेरी मैच्योरिटी, आई वुड से विद अ गुड लेवल ऑफ मैच्योरिटी, द वे पूजा भट्ट रिप्लाइड कि हाँ, मेरा बहुत बढ़िया टाइम था, इट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ जो मैंने बॉबी देओल के साथ में बिताया. लेकिन आज के दिन में व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज वी बोथ जस्ट मूव्ड ऑन इन डिफरेंट डायरेक्शंस. और वो कितना खुश है आज के दिन में अपनी फैमिली के साथ में, क्यों बातें करनी है वो सब. वेरी मैच्योर रिप्लाई इंडीड. चलिए उसी बात पर, ये अमेजिंग सा रेट्रो भी हो जाए, सुनते हैं बैक टू बैक गाना नंबर 16 एंड ऑफ कोर्स फॉलोड बाय दिस वन कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 विद रेणुका. इट्स मस्ती टॉप चार्ट्स.
0: Trending song number 16.

0: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: गॉसिप की बात करें तो हमसे भी कहीं आगे बढ़कर बॉलीवुड के लोग खुद गॉसिप मॉन्गर्स हैं, है कि नहीं? रेडियो मस्ती 24/7, इट इज रेणुका विद यू। वेलकम वेलकम।
3: फ्रॉम रॉकिंग द चार्ट्स टू रूलिंग द वीकली काउंटडाउन, जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20।
2: लायन लिख के भेजा कि नहीं भेजा आपने? वेल, लायन सिटी चैलेंज हमारा सबसे सबसे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट अमेजिंग सी जो एक गेम शो है जो आने ही वाला है बहुत ही जल्द आपके देखने के लिए। बी अ पार्ट ऑफ इट गाइस। Alright, I'm just going to talk about something very, very unique. हाँ, जब बॉलीवुड में कोई शादी अनाउंस होती है ना तो देश का GDP तो नहीं बढ़ता, वो तो बल्कि कम ही होता है, बिकॉज ये लोग मोस्टली जाके बाहर ही करते हैं शादियां, लेकिन इंस्टाग्राम की एंगेजमेंट जरूर बढ़ जाती है। मतलब आप सोचो, एक फोटो आती है और पूरा पूरा इंटरनेट शर्लॉक होम्स बन जाता है। देखो रिंग का एंगल, देखो देखो बैकग्राउंड में फूल, देखो ये कौन सी जगह है। अरे भाई, हम तो देखा जाए तो आप हैं, हम हैं, हम तो अपनी शादी की एल्बम इतने ध्यान से नहीं देख पाए यार, जितने की मतलब सीरियसली इन लोगों की फोटोज देखनी पड़ती हैं। रेडियो मस्ती 24/7 पर अगला गाना नंबर 15। 8 से 15। कोई नहीं कह सकता कि हमारे इस शो में एक्साइटमेंट नहीं रहती है। 15 से 14। Pretty wavy sort of a gana, right? So these two ganas, जिसमें एक गिरा है बहुत सारा और दूसरा थोड़ा सा उठा है, और हम दोनों सुनेंगे back to back on Radio Masti 24/7. It is Masti Top Charts with Renuka. ये है गाना नंबर 15 और 14। मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द इन दोनों गानों के उस पार on, of course, Masti Top Charts.
1: Trending song number 15.

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yes, must be top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Must be top 20. Only on Radio Must Be 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
1: आइए आइए हमारे दूसरे घंटे में आपका स्वागत एंड ऑफ कोर्स देयर इज वन एंड ओनली हु इज वेटिंग फॉर यू अक्रॉस दिस आवर एंड दैट इज रेनुका एंड दिस इज ऑफ कोर्स मसी टॉप चार्ट्स
2: दे आर फ्रेश दे आर हॉट
1: और यही फ्रेश हॉट स्पाइसी गानों के साथ में मैं और आप मिलते हैं हर फ्राइडे शाम 5 से 8 एंड इन केस यू आर लिसनिंग टू दिस शो ऑन संडे वेल लेट मी टेल यू आप ऑन कोर सुन रहे हैं मैसेजेस ना भेजें क्योंकि मैं इस टाइम ऑन ड्यूटी नहीं हूं बट फिर भी बीइंग 24/7 डेफिनेटली आपको जवाब कोई ना कोई तो दे ही देगा वेल लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट एल्स इज अमेजिंग ऑन दिस संडे वेल संडे मतलब कि 14 तारीख है ना और 14 तारीख मतलब कि दो दो एक नहीं दो दो ऐसी चीजें हैं जो कि अपना लास्ट डे मना रही हैं वन इज शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट का 25वां जो 25th ईयर है दैट दे आर सेलिब्रेटिंग इन रफल सिटी जहां वो इस टाइम पर हैं वो वाला प्रमोशन खत्म हो रहा है तो आप सोचिए जो 5 डिशेज उनकी सिग्नेचर डिशेज आपको इस टाइम $25 में मिल रही हैं उसके सिर्फ 2 दिन रह गए हैं इसीलिए प्लीज संडे से पहले जाएं और लुत्फ उठाएं बिकॉज ये डिशेज फिर से जब अपनी नॉर्मल प्राइस पे चली जाएंगी तो आप बोलेंगे ओए यार रह गई सो शाही महारानी का खाना एनी डे एंड ऑफकोर्स द सेकेंड थिंग इज जोया लुकास का 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस ओ माई गॉड उसके भी 2 ही दिन रह गए हैं बॉस सो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट that this weekend before Sunday you guys go and grab both these offers jaake shopping karni hai aur phir jaake khana khana hai done up next is this gana जो कि 11 पे होता था और इस समय फिसल के 13 पर पहुंच चुका है well, I'll tell you more about restaurants में जब लोग जाते हैं तो क्या होता है बॉलीवुड में स्पेशली बट आफ्टर दिस ट्रैक राइट स्टे ट्यून्ड दिस इज रेडियो मसी 24/7 विद रेनुका
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 13

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: बॉलीवुड में ना हर फ्राइडे को सिर्फ मूवी रिलीज नहीं होती है, इमोशंस रिलीज होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स एंड मस्ती टॉप चार्ट्स में बॉलीवुड की फुल टू खबरें और गॉसिप। फ्रॉम रॉकिंग द चार्ट्स टू रूलिंग द वीकली काउंटडाउन, जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20। टॉकिंग अबाउट द मूवीज, जी हाँ, हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है, जवानी तो इश्क होना है। एंड ऑफकोर्स उससे पहले थी पति पत्नी और वो दो। आपने इन दो में से कोई भी फिल्म देखी या नहीं देखी मुझे बताइएगा जरूर, बिकॉज आई एम रियली वेरी वेरी वेरी इंक्विजिटिव टू नो कि यार आप लोग आजकल जाकर हॉल्स में मूवी देखते भी हैं, सिनेमा हॉल में जाकर देखते हैं, या यू हैव रियली गॉट एज लेजी एज आई हैव फ्रेंकली। क्योंकि OTT पर फिल्म आगे जाके आ ही जानी है, तो कौन सा हमें कोई धार पड़ी है जाके देखना। हाँ, लेकिन हमको कभी कभी अपने काम की वजह से जरूर देखनी पड़ती हैं फिल्में, और तब मुझे लगता है अरे यार सीरियसली, बड़े सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि बम्स फ्लैट हो जाते हैं बैठ के 3 घंटे। पता नहीं हम लोग ने कैसे जिंदगी भर मतलब फिल्में हॉल में जाके देखी हैं, है ना। खैर तब ऑप्शन भी नहीं था। And that is Gaana Mubarak coming up on Radio Musti 24/7 followed by
3: Jinni soni lagdi hai mainu kise hor na lagge lagge।
2: Well, of course, the pehla gaana has gone from 14 to 12, and this one, this is called Dil Wale Chor, and this was on number 13 last week, aur ye upar uth ke apni zindagi mein 11 number par pahuncha hai, kya baat hai। I love the songs that go up the ladder every week। तो भाई आप बताइए कि ओपनिंग कितनी हुई, एडवांस बुकिंग क्या थी। भाई साहब सीधी सी बात है, हमें तो स्कूल में मैथ से मतलब इतनी परेशानी होती थी, और आप लोग बॉक्स ऑफिस में इतनी PhD कर चुके हैं उसके नंबर्स के साथ में, दैट समटाइम्स आई फील छोड़ना यार, मतलब सीरियसली हाउ डज इट मैटर यू, तुम्हारे घर पे आ रहे हैं वो पैसे नहीं आ रहे ना, तुमने तो खर्चे ही हैं देखने के लिए। Radio Musti 24/7, let's listen to the next two tracks and I'll be back with some more news and the कितने रह गए, ओहो अभी तो 10 गाने रहते हैं, सुनते रहिए।
0: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 12।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
3: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
4: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो। ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 11।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: और कुछ देर पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखना कितना बड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन अगर वाकई फिल्म ऐसी हो जो कि आपको पता है कि आप जाएंगे तो शायद दोबारा जाना चाहेंगे, दैट इज द काइंड ऑफ फिल्म दैट इज रिलीजिंग और ऑलरेडी रिलीज टुडे गाइस. रेडियो मस्ती 24/7, वेलकम बैक टू मस्ती टॉप चार्ट्स. From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Musti Top 20. मैं वापस आऊंगा. आप बोलोगे तू कब से आऊंगा कहने लग गया रेणुका. नहीं नहीं, मैं वापस आ गई. बात कर रही हूँ मैं इम्तियाज अली की फिल्म. जी हाँ, दैट इज वन फिल्म आई टेल यू गाइज आई हैव बीन really waiting for in a way. वो क्योंकि मुझे पता है इम्तियाज अली की फिल्म है तो waste of time नहीं होगा. AR रहमान का म्यूजिक है, obviously waste of time नहीं होगा. नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स हैं इसके अंदर, so बिल्कुल भी waste of time नहीं होगा. And of course it is related to one of those very you know topics which is very passionate, we are very passionate about it, and that is the partition, है ना, 1947 की partition और उससे related कहानियाँ. अब आपको पता ही है कि इतने ज़्यादा लोग मतलब हैं नहीं जो हमको कहानियां सुना पाए ऑफ द पार्टीशन. सो वट एवर हैपन्स इट्स रियली रियली रियली प्रेशियस. सो वेल, इम्तियाज अली की ये लेटेस्ट फिल्म विच इज कॉल्ड मैं वापस आऊंगा, इट इज अबाउट अ 95 ईयर ओल्ड मैन जो कि स्ट्रोक हो जाता है उनको और वो अपनी मेमोरी लूज करने लगते हैं. बट ऐसा लगता है कि जैसे अंदर कहीं ना कहीं पीस नहीं मिल रहा है उनको, एंड देर इज समथिंग अनरिजॉल्व फ्रॉम द टाइम ऑफ पार्टीशन, जो फाइनली कन्फ्रंट किया जाता है. उनके जो ग्रैंडसन है दैट इज वेदांग रैना, ही इज फ्लाइंग बैक फ्रॉम इंग्लैंड टू बी बाय हिज साइड. और उसके बाद ऑफकोर्स पिछली यादें याद आती हैं. दिलजीत दोसांझ को देखेंगे आप इस फिल्म में, एंड आई अंडरस्टैंड दैट ही इज डन एन अमेजिंग जॉब एज ऑलवेज. बट इस फिल्म को अगर और किसी के नहीं तो नसीरुद्दीन शाह के लिए जाना बनता है. वेदांग रैना है, शर्वरी है, ऑफ कोर्स दे आर द बीटिंग हार्ट ऑफ द फ्लैशबैक्स, जैसे जैसे पुराने जमाने की बात होती है, एंड देयर इज अ लॉट मोर. बट फिलहाल के लिए उस फिल्म का गाना है जो नंबर 10 पर आपका इंतजार कर रहा है. well, ये थोड़ी सैड बात है कि ये गाना नंबर 8 पे था और इस हफ्ते नंबर 10 पर है. बट आई कैन प्रॉमिस यू दैट दिस गन इज गोना मेक अ कमबैक डेफिनेटली वंस अगेन. जैसे फिल्म रिलीज होगी ये दोबारा से एक पटाखे की तरह आपकी कानों में गूंजेगा. गुड इवनिंग एंड अ स्मॉल ब्रेक हियर एंड आई विल बी बैक वेरी सून.
0: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 10.

0: you, Tushahi Maharani, for the special treat.
1: Thank you, Tushahi Maharani, for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi signature veg and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
6: Check it out.
7: म्यूजिक डायरेक्टर्स, गाने और मतलब कुछ क्रिएटिविटी, इस समय आपको लग नहीं रहा कि बॉलीवुड में थोड़ी सी लैकिंग होती चली जा रही है? वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक. फ्रॉम रॉकिंग द चार्ट्स टू रूलिंग द वीकली काउंटडाउन, जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20. मस्ती टॉप 20 पर मैं बताना चाहूंगी आपको कि हमारा जो अगला गाना है ना, वो भी एक कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच में ही है. आप जानते हैं कि ये जो फिल्म है हाल ही में रिलीज हुई है, जी हाँ, एक तरफ है जवानी तो इश्क होना है और एक तरफ है वेलकम टू द जंगल. अब मतलब वेलकम टू द जंगल ने कहा कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी पुराने जमाने के गाने को ही दोबारा से रिलॉन्च करूंगा. गाना बुरा नहीं है वैसे, और क्या छलांग मार के सीधा हमारे नए शो के नंबर 9 पर पहुंचा है. जी हाँ, बिल्कुल, दिस इज अ न्यू ट्रैक दैट यू आर गोइंग टू लिसन टू राइट आफ्टर आई टेल यू अबाउट गवर्नर. आप जानते हैं, वन एक्टर, वेल दे यूज्ड टू बी वन एक्टर कॉल्ड इरफान खान. जी हाँ, उनका जो गुजरना था, उनका जो हिज डेथ वाज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट शॉकिंग एंड आई वुड से अ ह्यूज लॉस टू बॉलीवुड, राइट? आई डोंट नो इफ यू वुड अग्री विद दैट. ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम सुशांत सिंह राजपूत एंड अ लॉट अदर्स दैट वी कैन टॉक अबाउट, बट देर इज वन गाय हु आई नो आई कैन बेट ऑल माई मनी ऑन, ठीक है? और वो है मनोज बाजपेयी. लड़का कहाँ से चल के कहाँ तक पहुँचा है यार जिंदगी में. आई हैपन टू मीट हिम एंड आई टेल यू ही इज वन हेल ऑफ अ ग्राउंडेड कैरेक्टर. मेहनत और सेंस ऑफ ह्यूमर भी है. मतलब मैंने उनसे सिर्फ इतनी सी बात पूछी थी कि यार एक बात बताओ, आप जब भी किसी फिल्म में आते हो हमें सीधा बैठना क्यों पड़ता है उस फिल्म में? व्हाई कांट वी जस्ट रिलैक्स अ लिटिल बिट? व्हाई कांट वी जस्ट से हाँ यार मूवी देख रहे हैं, थोड़ा सा अनवाइंड करते हैं? नहीं, मनोज बाजपेयी की फिल्म है तो सीधा ही बैठना पड़ेगा बिकॉज उसमें बहुत स्ट्रेस होगा. एंड ही जस्ट लाफ्ड इट ऑफ. इट वॉज सो क्यूट द वे ही आंसर्ड. इफ यू वॉन्ट नो एग्जैक्टली वॉट ही आंसर्ड देन यू हैव टू गो टू आर यूट्यूब एंड चेक मेरा और मनोज बाजपेयी का इंटरव्यू. जी हाँ, या फिर आप जाइए मस्ती AVI का बटन दबाइए हमारे ऐप पर, विच इज रेडियो मस्ती 24/7, और वहां से

0: पॉप रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार बॉटल में खरीद रहे हैं।
3: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
4: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
5: The makers of Governor, जी हाँ, उन्होंने अनाउंस करी एक स्पेशल प्राइसिंग स्ट्रेटजी अहेड ऑफ द फिल्म्स रिलीज, और ये फिल्म भी आज ही रिलीज हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि आज का दिन कितना मतलब रेड लेटर डे है बॉलीवुड के लिए कि क्या क्या फिल्में रिलीज हो रही हैं। नॉट बैड। इम्तियाज अली की अभी मैंने आपको बताया, मैं वापस आऊंगा, एंड ऑफकोर्स साथ ही में मनोज बाजपाई की फिल्म विच इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स ऑफ

0: 2026. A very good evening.
1: Musty Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week. Full on Renuka style. Renuka!
0: And that is Renuka, my darling. Lekin aaj maine Ruchika, my darling, ko ye sara kuch dedicate kiya hua hai. So, well, the makers of Governor, जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने खास प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात करी है. जी हाँ, पहली 25,000 टिकटें, जी हाँ, 25,000 टिकट्स आपको पता है किस रेट पर बिकेंगी? 1990s के रेट पे. कैन यू बिलीव इट? इट इज लाइक अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिकॉज इट इज, वेल, ये जो टिकट्स हैं, दे हैव सडनली बिकम द टॉकिंग पॉइंट. हर जगह पे लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई ये फिल्म वाकई नॉस्टैल्जिया और मार्केटिंग का एक मिक्स बन चुकी है. वेल, द टीम बिहाइंड गवर्नर, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली दे लुक्ड इनटू द फिल्म्स पीरियड सेटिंग. उन्होंने कहा, यार स्टैंडर्ड प्रमोशंस क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ऑडियंसेस को बैक इन टाइम ले जाते हैं. ठीक है, 25,000 टिकटों को हम 1990s के रेट पर ऑफर करते हैं. सिंपल सा आइडिया है, लेकिन आज के दिन में मार्केटिंग की दुनिया में, वेल, बहुत बड़ा आइडिया है. वेल, द एम इज एक्चुअली टू रिक्रिएट द फीलिंग ऑफ द एरा जिसमें वो फिल्म बनी है. सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लेकिन जैसे आप अंदर आते हैं थिएटर में, तो ऐसा लगता है कि यार सडनली व्यूअर्स के बीच में एक अलग ही टॉपिक बन जाएगा, विच इज सो ट्रू. वेल, द अनाउंसमेंट वॉज शेयर्ड ऑब्वियसली ऑन सोशल मीडिया, और हाल ही में इमीडिएटली एकदम फैल गए. सबने कहा, अरे चल यार, टिकट सस्ती वाली लेकर आते हैं. नॉट बैड, बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस, व्हाट इज द नेक्स्ट गाना दैट आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग हियर इज गाना नंबर 8. हॉट शॉट लगती है तो ब्याह करवा दो, ये भी कोई रीजन हुआ, ये भी कोई लॉजिक हुआ, बट देन व्हाई एम आई लुकिंग फॉर लॉजिक इन अ हिंदी मूवी. रेडियो मसी 24/7 पर छोटा सा ब्रेक, मिलती हूँ आपको अगले घंटे. फिलहाल के लिए एक बढ़िया सा मैंने आपके लिए रेट्रो भी चलाया है. उफ, यू विल फॉल इन लव विद द गाना वंस अगेन. सुनते साथ साथ, मिलती हूँ बहुत ही जल्द.
2: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Trending song number 8.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आर जे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: 1/2 kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
3: क्या
4: जी? जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.
5: Bollywood flashback.

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yes, Musty Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musty Top 20. Only on Radio Musty 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
1: बॉलीवुड की सबसे इंस्पायरिंग चीज आर द कमबैक्स। आज फ्लॉप है तो कल टॉप है, आज ट्रोल है तो कल ट्रेंड है। इसीलिए बॉलीवुड और लाइफ दोनों एक जैसे हैं। इंटरवल के बाद कहानी कभी भी बदल सकती है और इसी बदलती कहानी में आपका स्वागत। जी हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है हमारा मस्ती टॉप चार्ट्स। दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, They are spicy and they are happening. Join us on Absolutely. आप join कर चुके हैं 5 बजे से। हम सारे के सारे साथ में बातें कर रहे हैं और अब हम पहुंच गए अपने आखिरी घंटे में, जहां पर आने से पहले ही मैं भागने का प्लान बनाती हूँ और उसके लिए जिम्मेदार हैं आप, बाय द वे, बिकॉज रियली स्पीकिंग मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पर डांट खा के जाने का, क्योंकि हर किसी को सेटिस्फाई करना तो बहुत मुश्किल है जिंदगी में, राइट? यस और नो? रेडियो मस्ती 24/7 पर बताना चाहूंगी अगली हमारी खबर। ऑफकोर्स बिफोर आई प्ले गाना नंबर 7, और मैं आपको बताऊं कि ये जो गाना नंबर 7 है ना, बाय द वे ये वाला गाना 12 नंबर पे था पिछले हफ्ते। सो जब तक आप याद करते हैं, मैं बता देती हूँ कि हमारे एक्टर, कॉमेडियन और फिल्म मेकर वीर दास जो हैं, उन्होंने अपना अगली फिल्म का, जी हाँ, अपना डायरेक्टोरियल वेंचर जो है, इट्स कॉल्ड 12 नंबर, उसका कास्ट अनवील किया है और उसमें आप देखने वाले हैं अरुणोदय सिंह को, अतुल कुलकर्णी को और श्रेया पिलगांवकर को, अमंग मेनी मेनी अदर्स। इट इज दैट अमेजिंग गाइस। और इसमें शीबा चड्ढा दिखेंगी, साथ ही में एहसास चन्ना, निहारिका, लयरा दत्त एंड सुहेल नायर, अपार्ट फ्रॉम पूजा स्वरूप एंड नवीन कौशिक। अब वीरदास ने क्या कहा भाई, ये प्रोजेक्ट बड़ा एक्साइटिंग है। वैसे जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करने वाले होते हैं, ये यही बात बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज ये कह रहे हैं कि बड़े सारे ग्रुप ऑफ एक्टर्स जो हैं, जिनके काम को मैंने बड़े सारे सालों तक निहारा है, वो सब इस फिल्म में होने वाले हैं। देयर फॉर द एनर्जी, द इंटेलिजेंस एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस फिल्म इज गोइंग टू बी अमेजिंग। इट्स एक्चुअली अ साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म, सो दैट गॉट मी गोइंग, गाइस। साइकोलॉजिकल हॉरर, आई लव देम। That is the गाना नंबर 7 I was talking about. जी बिल्कुल, ये था 12 नंबर पर और इस हफ्ते पहुंच चुका है नंबर 7 पर। Well, आप लोगों ने पसंद किया है इसको, मैंने कुछ नहीं किया। रेडियो मस्ती 24/7 पर छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, कमिंग बैक राइट बैक हियर, सेम प्लेस सेम जगह सेम सेम सेम एवरीथिंग। 6 गाने बताने के लिए तैयार है?
2: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page. Radio Musty 24/7 Singapore.
3: Check it out.
2: Trending song. Number 7.

0: अब खुदा तो क्या ही जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगले 6 गाने कौन से होने वाले हैं। रेडियो मस्ती 24/7 पर आपका स्वागत एक बार और। दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स।
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20।
2: सुबह के 4 बजे तक कोई इंसान कैसे काम कर सकता है, वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री में 50-50 साल जहां पर बिता चुका हो ऑलरेडी एंड अभी फिलहाल 83 का हो। सिर्फ एक आदमी कर सकता है एंड दैट पर्सन इज एब्सोल्युटली एन इंस्पिरेशन गाइस। मतलब मैं कहती हूँ कि मेरी नजरें चाहे जितने गलत इंसानों के लिए गिरी हूँ इन द पास्ट, जैसे कि आमिर खान, लेकिन एक इंसान जिसको मैंने बचपन से पसंद किया है वो है अमिताभ बच्चन। आई टेल यू, एंड अमिताभ बच्चन मतलब ऐसा नाम कि मतलब तू अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, यू नो, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज इट जस्ट हेल्ड a very different level, right? Well, megastar Amitabh Bachchan is samay 83 and he has given a glimpse of his relentless work ethic. Matlab aap sochiye, subah 4 baje tak kaam karte hain yaar before getting back on his feet for another day on the set. Aap soch sakte hain ki kafi concerns hue unke health ke amid obviously Kalki 2898 AD part 2 jo shoot ho raha hai. Well, what's happening is that extraordinary apni dedication inhone dikhai hui hai. एंड वंस अगेन उन्होंने ये कहा कि भैया ऐसा है, 1 बजे रात के दोपहर के वो सैटरडे को एक पोस्ट डाले उन्होंने और कहा कि अभी भी उठाऊं, सुबह 4 बजे तक काम कर रहा था और अब आई एम ऑल सेट, जस्ट बी हाइड्रेटेड एंड बड़ी गर्मी है, अपना ध्यान रखिए, मतलब उस तरह की बातें। साथ ही में ऑफकोर्स ही रोट अ वेरी स्वीट मैसेज फॉर आलिया भट्ट, सेड माय आलिया ऑल द बेस्ट फॉर फोर्स। मतलब आलिया की काफ़ी बढ़िया एक्टिंग लग रही है उस फिल्म में, बाय द वे मैंने अभी तक देखा नहीं है उसको, सिर्फ ऑब्वियसली आई हैव सीन द ट्रेलर बट नॉट मच, बट आई मस्ट टेल यू दैट दैट फिल्म सीम्स लाइक वंस अगेन आलिया हैज डन एन अमेजिंग जॉब। बट वेल, व्हाट हैज बीन डूइंग एन अमेजिंग जॉब इज दिस गाना जो नंबर 16 से सीधा 6 नंबर पर आया है। And that is called a Mashuka Cocktail 2, followed by Gana number 5. Ji haan. It's a little bit surprising कि ये गाना फिलहाल इतना आगे कैसे बैठा हुआ है। होता ना कुछ लोग छुप के बैठ जाते हैं, उन पे नजर ही नहीं पड़ती, इसीलिए वो उसी जगह पर बैठे रहते हैं। 4 से 5 पर इस टाइम पर रेडियो मस्ती 24/7 पर सुनते हैं दोनों गाने बैक टू बैक एंड आई एम गोना कम बैक एंड गिव यू मोर न्यूज एंड ऑफ कोर्स साथ ही मैं बताऊंगी आपको टॉप 4 गाने कौन से हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड, देयर इज अ न्यू गाना दैट हैज मेड एंट्री इन द टॉप 4 टुडे। स्टे ट्यून्ड टू फाइंड आउट।
3: हिट अस ऑन द ग्राम, इट्स रेडियो मस्ती 24/7 एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर एवर बजिंग फेसबुक पेज रेडियो मस्ती 24/7 सिंगापुर। चेक इट आउट।
4: Trending song, number 6.

0: सुबह के 5 बजे जिम पहुंचना, जी हाँ, दैट्स व्हाट द बॉलीवुड स्टार्स क्लेम। और अगर मैं 5 बजे सुबह उठ जाऊं तो मुझे लगता है कि मैंने तो नेशनल अचीवमेंट अनलॉक कर लिया है। अ वेरी गुड इवनिंग, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 विद रेणुका।
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
0: मुझे धमकी आनी शुरू हो चुकी है, बोला कि जाइए सजना, आज कौन से नंबर पर रखा है आपने, पहले नंबर पर तो नहीं है, नहीं मतलब कुछ भी। और साथ ही साथ में धमकी ये भी आई है कि अभी अभी जो गाना मैंने चलाया था, जी हाँ, वो था जो हमारा, मैं खुद ही शक कर रही थी, मैं खुद ही शक कर रही थी, मैं बोल रही थी कि नंबर 5 पर जो गाना है पति पत्नी और वो दो का, हमने वहीं लगाया दिल, वो मतलब कैसे टिका हुआ है। तो मुझे धमकी आई है कि अगली बार ये गाना टॉप 10 में नहीं सुनाई देना चाहिए। अरे यार, मतलब सीरियसली ये धमकी दे दे के मुझसे काम कराओगे क्या, अब मेरे ये दिन आ गए। रेडियो मस्ती 24/7 पर द टॉप 4 सॉन्ग्स ऑफ द डे। Yes, it is चाहिए सजना। आय हाय, क्या गाना यार, हर बार दिल दहल जाता है। Alright, ये एक गाना है। दूसरा, ये जो गाना मैं आपको बताने वाली हूँ, कह रही है टॉप चार्ट्स में ही नहीं था यार फॉर मेनी वीक्स।
2: समझे थे हम,
0: जी हाँ, आपने सही पहचाना, दोनों के दोनों गाने धुरंधर से ही हैं। धुरंधर द रिवेंज, टू बी ऑनेस्ट, एंड देन देयर इज वन गाना विच सेज यार धुरंधर की लगाओ व्हाट। That gana has actually come from 7. It has come to the top 4. Isn't that amazing? And then, of course, it's the one and only song. Ab ye raaz bhi gehra hua ki in sab mein se number 1 par kaun sa gana hoga aaj ke din mein. गहरा हुआ ये राज और भी गहरा हुआ। देखते हैं, सुनते हैं, वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि आप लोगों के मैसेजेस क्या कहते हैं, नंबर 1 पर कौन सा गाना होने वाला है। रेडियो मसी 24/7 शॉर्ट ब्रेक।
3: बॉलीवुड फ्लैशबैक।

0: चलिए नंबर चार का खुलासा तो हो चुका है, तो रह गए तीन गाने एंड सरप्राइज सरप्राइज और नॉट सो मच सरप्राइज, तीनों ही गाने धुरंधर के हैं। जी हाँ, या पहला कह लीजिए या दूसरा धुरंधर कह लीजिए, लेकिन हैं तो वही के। गुड इवनिंग एवरीवन।
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
0: And what I totally enjoy is कि यहाँ पर धमकियों के रूप में मतलब गाना गा के भी लोगों ने भेजा है। आरती थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे वो गाना अपना भेजा है। अगर आपने बिना ट्रैक के भेजा होता ना तो सीरियसली शायद मैं बहुत दिनों तक शो ना कर पाती। अंतरा के साथ में मिलके वो जो साजिश थी आपकी कि भाई गहरा हुआ हम गहरा हुआ नहीं जाइए सजना, हम जो गा के बता देंगे, गहरा हुआ गा के बता देंगे, बड़े सारे गाने इस तरह से कर देंगे रेणुका को कि वो बिल्कुल मतलब हमारे कहे हुए गाने को नंबर वन कर दे, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मानती हूँ। क्या है ना कि भाई उस समय चाहे मैं मान भी जाऊँ लेकिन बाद में मैं बिदक सकती हूँ, क्योंकि जैसे करण जौहर का काउच बॉलीवुड का अनऑफिशियल लाई डिटेक्टर टेस्ट बन चुका है। यू नो, लोग आते हैं, फिर हंसते हैं, गॉसिप करते हैं और फिर अगले दिन कहते हैं मैंने ऐसा कब बोला, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही कहने वाली हूँ, मैंने ऐसा कब बोला। सो रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, वंस मोर आई एम गोना प्ले द टॉप थ्री गानास एंड
2: सारियां विसर गईया रामा वे खेड़े पासे,
0: एंड आई एम गोना लीव यू विद इनमें से नंबर वन कौन सा होने वाला है, यू हैव टू टेल मी।
2: सानू सारियां,
0: जी बिल्कुल, क्या गाना है जाइए सजना फॉलोड बाय गहरा हुआ, नंबर वन टू थ्री।
2: ये नामाने फिर से नैना भरे,
0: This is such an amazing song and I was thinking कि इतने दिनों तक ये गाना कैसे हमारे से बिल्कुल मिस हो गया यार, ये कैसे टॉप चार्ट से निकल गया और इसको किसी ने पूछा भी नहीं, I would not believe it। Radio Masti 24/7 पर गाना नंबर तीन coming up right now and then बस आप ही के कहने का इंतजार है कि नंबर वन कौन सा होना चाहिए, मैंने तो सोचा ही नहीं है।
3: Trending song number three.

0: 3, 2, 1.
1: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
2: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन

0: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे?
1: एक्साइटेड
2: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: And on that note, once again, a gentle reminder that guys, the Lion City Challenge is samay apni full steam ahead. Ji ha, absolutely looking for the right players. So agar आप आना चाहते हैं इस गेम में, विच इज द वन ऑफ इट्स काइंड, द फर्स्ट टाइम एवर इन सिंगापुर. कम ऑन गाइस, क्रिएट सम हिस्ट्री. सिंगापुर में रहते हो, थोड़े मजे मजे करो. रेडियो मस्ती 24/7 और मस्ती मीडिया नेटवर्क के साथ में. आपको पता है कि जब हम कुछ करते हैं तो कमाल धमाल ही करते हैं. तो आ जाओ, जस्ट राइट लायन एंड व्हाट्सएप टू अस. हम आपको दो सवाल भेजेंगे. वो दो सवाल के जैसे ही आप हमें जवाब भेजेंगे, और वो सही जवाब होने चाहिए, उसके बाद हम आपको फेज टू में लेके जाएंगे. और फेज टू का मतलब है तैयार जाइए थोड़ा, मतलब हेयर के लिए, थोड़ा मेकअप के लिए, थोड़ा लाइट्स कैमरा एक्शन के लिए, और उस हॉट सीट के लिए जहां पर बैठेंगे आपके होस्ट और साथ में आप, टू प्ले द गेम. यस,
4: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20.
3: हाँ राइट भाई, हम तो जा रहे हैं और हमारे साथ जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं. फॉलोअर्स से याद आया कि बॉलीवुड में टैलेंट के साथ साथ फॉलोअर्स भी काउंट होते हैं, है ना. किसी के 50 मिलियन, किसी के 80 मिलियन, किसी के कुछ. लेकिन असली सवाल ये है कि कितने फॉलोअर्स, इतने फॉलोअर्स में से कितने ऐसे लोग होते हैं कि अगर आपको घर शिफ्ट करना हो तो कोई मदद करेगा. अच्छी असली पॉपुलैरिटी का टेस्ट तो वही है बॉस. तो ऑन दैट नोट मैं निकल रही हूँ यहाँ से. रेडियो मस्ती 24/7 पर दो गाने, और उसमें से कौन सा नंबर वन होगा ये यू विल फाइंड आउट एग्जैक्टली एज सून एज आई गो अंडरग्राउंड. ओके, बिकॉज मुझे नहीं देखने मैसेजेस फॉर द नेक्स्ट वन आवर एटलीस्ट, उसके बाद में देखूंगी. चलिए, हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड. आपका वीकेंड, मेरा वीकेंड शुरू होता है अब ऑन रेडियो मस्ती 24/7. इट इज टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, एंड आई ऑलवेज से स्माइल, बिकॉज स्माइल इज द सेकेंड बेस्ट थिंग यू कैन डू विद योर लिप्स. लव यू ऑल, बाय.
2: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
5: Check it out.
2: Trending song number 2.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग, चेक इट आउट, नंबर वन।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Yo!

was the message, eh?

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: The perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Pen. Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: पे पूरे 100, रात के बज गए 2:15, जो होता है होने दो।
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

रहना मुझे घर पे नहीं रहना, आज तेरे नाल मेरी सारी शाम गुजरनी नहीं, आज मुझे दुनिया की सुननी, मुझे तो है बस अपनी ही करनी।

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: रात अकेली है
1: तो क्या हम तो आप

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
2: रात अकेली है
3: तो क्या हम तो आप

0: बात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: 40% ऑफ 40% जॉय आलुकास
2: 40% ऑफ ओ माय गॉड लेट्स गो लेट्स गो।
3: ऑफर ऐसा कि आप भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। जोया लुकास लाया है द बिगेस्ट ज्वेलरी सेल, फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड डायमंड पोलकी एंड प्रेशियस ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन डायमंड एक्सचेंज। ऑफर वैलिड टिल 14 June 2026। विजिट 412-134 एंड 320 सरंगुन रोड। जोया लुकास, द वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर।
0: रात अकेली है
4: तो क्या, हम तो आप

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

0: लव का फंडा फेल हो गया, मेरी मोहब्बत का बाप खत्म खेल हो गया।
1: अरे उल्लू की तुम, तुझे नहीं मालूम, अपने सवाल का जवाब ला, कुछ मत कर, कुछ मत कर, जा जा।

किसी लड़की की बाहों में झूल जा, दो चार दिन बाद उसको भूल जा। ए, और सुन,

0: रात्रि बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: अच्छा डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: जादू है, नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

वाकई ये गाना जब मैं सुनती हूँ ना, मुझे याद आ जाती है उन दिनों की दिल्ली में सर्दियों में, है ना, जब रजाई में लेट के और ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती चला करता था। ओ माय गॉड, मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आई somehow get those thoughts back in my mind. Good morning everybody, this is Renuka with you, welcome to the morning show. Serious headlines with a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Masti 24/7. गुड मॉर्निंग सपना जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल पुराना गाना होगा तो आप ही के लिए होगा। चलिए चलिए जल्दी से मुझे बढ़िया बढ़िया खबरें दीजिए कि आज की जिंदगी में चल क्या रहा है, और मैं आपको बताऊंगी खबरें क्या हो रहा है दुनिया भर में। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा सौदा है, आप अपनी ज़िंदगी बताइए, मैं सारी दुनिया की बातें बताती हूँ रेडियो मस्ती 24/7 पर। वेलकम है जी, वेलकम आपका बहुत बहुत, बिल्कुल इट्स अ ब्यूटीफुल मंडे, आई एम श्योर मौसम और भी बेहतर हो जाएगा। पिछले हफ्ते आप जानते हैं 20 point something डिग्रीज पर पहुँच गया था यहाँ का मौसम सिंगापुर में, तो बड़ी हैरानी हुई, इसे फील नहीं हुआ मेरे को, फील फिर भी गर्मी और ह्यूमिडिटी लग रही थी, लेकिन न्यूज़पेपर्स ने कुछ ऐसा कहा तो मुझे लगा वाह भाई, मतलब मौसम वाकई बदल रहा है। लेकिन आज की शुरुआत करेंगे हम एक बढ़िया के बढ़िया से कोट के साथ में, जो हमेशा करते हैं। ये गाना भी बहुत प्यारा है, मोह मोह के धागे, सुनेंगे थोड़ी देर में। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं भाई कि आज का कोट ऑफ द डे क्या है, तो भाई मैं तो यही कहूंगी, इफ यू सी समवन विदाउट अ स्माइल टुडे, गिव देम योर्स। जी हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी दुखी लगे, परेशान लगे, स्ट्रेस्ड आउट लगे, तो थोड़ा सा स्माइल उसकी शक्ल पे लेकर आना, एंड यू फील सो सो सो अमेजिंग, आई प्रोमिस यू दैट। रेडियो मसी 24/7, बढ़ते हैं हमारे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के पास, और फिर बस वापस आते ही लेट्स गेट रेडी for the news and the updates from across the world. This is Renuka with you. This is Radio Masti 24/7, a part of Masti Media Network. And yes, this is the morning show.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh mein raho.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा।
4: हाँ जी जी।
3: आधा केजी मसूर दाल।
4: जी जी।
3: काजू किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
4: जी जी।
3: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, why to fear when जीजी मार्ट is there?
3: क्या जी?
4: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: और इन अमेजिंग से गानों के इस बार इंतजार कर रही है आपकी रेनुका रेडियो मसी 24/7. यस इट इज टाइम फॉर द मॉर्निंग शो. बढ़े आगे अपनी खबरों के साथ.
1: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7. न्यूज व्यूज एंड अ पिंच मस्ती.
0: अगर आप हैं फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट वाले इंजीनियर्स. जी बिल्कुल. सिंगापुर का ड्राइव टू पुट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू वर्क, उसी के चलते बिल्कुल डिमांड बढ़ रही है फॉर फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स. मतलब कि टेक प्रोफेशनल्स जो कंबाइन करते हैं सॉफ्टवेयर स्किल्स विद द एबिलिटी टू एक्सप्लेन टेक्नोलॉजी टू क्लाइंट्स टू सॉल्व एवरीडे प्रॉब्लम्स. वेल, हाल ही में कुछ ऐसा पता लगा कि 35 ऐसी ओपनिंग्स हैं इन सिंगापुर फॉर दिस न्यू रोल ऑन मेजर जॉब पोर्टल्स एंड कॉर्पोरेट करियर पेजेस. ये वाले जो जॉब पोर्टल्स हैं उसमें माय करियर Future, LinkedIn, Indeed and corporations जैसे कि tech giants हैं Google and ByteDance, Telco, Singtel and AI startups Mistral, AI and Cognition. Well, ये जो openings हैं, they add to the 200 forward deployed engineers जो OpenAI, जो American company है behind the popular ChatGPT, वो plan कर रहे हैं to hire or train in Singapore in the next few days. अब अगर आप ढूंढ रहे हैं नौकरी और आपको लगता है कि आपको artificial intelligence में बड़ा interest है, तो फिर एक बार देखिए जरूर फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है. फिलहाल ऑलरेडी सिंगापुर में बहुत कुछ चल रहा है. यस, रीड अ लिटिल बिट अबाउट इट गाइस, आई एम श्योर यू विल फिगर आउट समथिंग. And that is DJ Doll playing on the airwaves of Radio Masti 24/7. Ji haan, sunte hain wala gana. And let's come back and talk a little bit more about Singapore. Ji haan, khabrein bahut saari baaki hain. Sunte hain gaane, relax, but dheere dheere get ready for the day ahead. All right, good morning.
2: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
3: Check it out.

शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

वापस आपका स्वागत करने के लिए रेणुका इज राइट हियर रेडियो मसी 24/7 अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस दिस इज द मॉर्निंग शो सुबह का असली वेक अप कॉल द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7 मॉर्निंग शो में इस समय मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी दैट वी आर स्लोली एंड स्टेडली गोइंग टुवर्ड्स द नेशनल डे. जी हाँ, तैयारियां बिल्कुल बिल्कुल शुरू हो चुकी हैं और हाल ही में इसी वीकेंड पर हमको खबर मिली कि प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग डिलीवर करेंगे अपना 2026 का नेशनल डे रैली स्पीच ऑन अगस्त 23rd. ये जो रैली है इट्स गोइंग टू बी हेल्ड एट द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज सेंट्रल इन अनमोखियो. प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने हाल ही में बताया द नेशनल डे रैली जो कि कंसिडर्ड होती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल स्पीच ऑफ द ईयर. वेल, ड्यूरिंग विच हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो एड्रेस करेंगे सिंगापुर को एंड ऑफ कोर्स दे ही विल आल्सो बी मेकिंग सम पॉलिसी अनाउंसमेंट्स. इस साल का जो इवेंट है वो होगा मिस्टर वोंग का तीसरा नेशनल डे रैली. लास्ट ईयर के नेशनल डे रैली में मिस्टर वोंग, हु इज आल्सो द प्राइम द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, ही एक्नॉलेज्ड द डिसरप्टिव पोटेंशियल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी लाइक एआई एंड अनाउंस्ड दैट द प्लान्स टू स्ट्रेंथन जॉब मैचिंग सर्विसेज आर गोइंग वेरी वेल. मिस्टर वोंग ने हाईलाइट किया था पिछले साल सिंगापुर का फर्म स्टैंड ऑन वेपिंग एंड साथ ही साथ में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट फंडेड ट्रेनीशिप प्रोग्राम फॉर ग्रेजुएट्स एंड एज फ्रेंडली नेबरहुड्स फॉर द एल्डरली स्टार्टिंग इन तोपायो. अब जो नए रीडेवलपमेंट प्लान्स हैं फूडलैंड्स, क्रांची, सिम्बावंग, उनको भी पिछले ही साल में प्राइम मिनिस्टर वोंग ने बताया था अपने मले और मैंडरिन स्पीचेस में. उन्होंने अनाउंस करे थे लोकेशन फॉर द सिंगापुर कॉलेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड शेयर्ड अ ट्रिब्यूट टू द चाइनीज कम्युनिटी इन हेल्पिंग शेप अ स्ट्रॉन्ग सिंगापुर आइडेंटिटी. अब देखते हैं कि इस बार क्या होगा. वेल, इट्स गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन अगस्त 23rd. तो बिल्कुल ऑल आईज ऑल इयर्स एवरीथिंग ऑन सिंगापुर है ना. Alright, up next is a beautiful track coming up from Shuddh Desi Romance. वापस आती हूँ इसी शुद्ध देसी रोमांस के साथ after this break. Good morning.

0: और ये गाना जैसे कि आप जानते हैं इस फ्रॉम द वेरी पॉपुलर फिल्म इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा। खैर मैं तो वापस आ गया। सीरियस हेडलाइंस विद अ नॉट सो सीरियस वाइब ओनली ऑन द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7। ऑलराइट, इस टाइम बॉलीवुड की खबर आपको देना चाहूंगी मैं। And of course, I'll talk about मैं वापस आऊंगा। Well, day one पे 1.25 करोड़, जी हाँ, इतने में ही बोनी हुई। लेकिन day two, because the word spread, right? Word of mouth की वजह से अगला दिन 60.9% ज्यादा रहा earnings के हिसाब से। जी हाँ, मैं Friday और Saturday की बात कर रही हूँ, जो positive trend है, लग रहा है कि ये continue करेगा into the first Sunday, जी हाँ बिल्कुल, जो कि कल था। एंड अभी नंबर्स नहीं आए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये मैं आपको बता सकती हूँ कि औरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं ये फिल्म जरूर देखाई हूँ। वेल, आई डिड नॉट फाइंड इट एज एक्साइटिंग एज एन इम्तियाज अली फिल्म आई वुड नॉर्मली। ठीक है, स्लो है, नॉर्मली सारी फिल्में थोड़ी सी स्लो रहती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट कुड बी मेड बेटर। बहुत ही बढ़िया सी ये फिल्म जो उन्होंने फोकस करके पार्टीशन पे बनाई है और भारत और पाकिस्तान का सारा एक बैकग्राउंड दिखाया है, एक 95 ईयर ओल्ड नसीरुद्दीन शाह की याद के थ्रू, राइट? सो ऑब्वियसली देर आर सेवरल एक्साइटिंग मोमेंट्स एंड देर आर सम वायलेंट एस्पेक्ट्स इन द फिल्म एज वेल, पर मुझे ऐसा लगा कि डेफिनेटली दिस कुड हैव बीन बेटर। जैसे लव आजकल, रॉक स्टार, हाईवे, इस तरह की फिल्मों के बाद में शायद इम्तियाज अली से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। वेल, लेट्स होप दैट पीपल फाइंड दिस मूवी मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज डेफिनेटली इट्स नॉट अ धुरंधर एंड इट इज नॉट समथिंग लाइक यू नो कोई भी पति पत्नी और वो दो टाइप्स। इट्स डेफिनेटली समथिंग दैट यू कैन वॉच, बट अगर आप बहुत ही स्लो मूवी देखने के मूड में हैं, हम तो अगले घंटे जाने के मूड में हैं, चलते हैं रेडियो मसी 24/7 पर। आपको मिलते हैं अरिजीत सिंह, ये गाना गा लें जरा, उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग।
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: नाचने का मन है,
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out. 3, 2, 1.
4: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग

0: आपकी भी है।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice. The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out. Josh Mehra.
3: वेलकम वेलकम रेडियो मस्ती 24/7. जी, हमारे दूसरे घंटे में आपका स्वागत. रेणुका इज विद यू सिंस 7 इन द मॉर्निंग एंड दिस इज द मॉर्निंग शो.
0: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7. न्यूज, व्यूज एंड अ पिंच मस्ती
3: ऑन द मॉर्निंग शो. एक नजर डालेंगे अपने पड़ोसी देश पर. जी हाँ, बिल्कुल, मलेशिया की बात कर रही हूँ मैं. मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने हाल ही में ये कहा दैट ही डिड नॉट वांट टू कॉल स्नैप स्टेट इलेक्शंस इन नेगोरी सेम्बलान. लेकिन उनका जो पीएच कोएलिशन है उसकी वजह से ही वाज लेफ्ट विद नो चॉइस ड्यू टू द एक्शंस ऑफ इट्स अर्स्टवाइल एलाइज इन द बीएन पैक्ट. ही वाज टॉकिंग अबाउट हाउ द 14 स्टेट असेंबली मैन ऑफ उमनाओ, अ बीएन लिंचपिन पार्टी, हैड पुल्ड देयर सपोर्ट फॉर नेगोरी सेम्बलान चीफ मिनिस्टर अमीनुद्दीन हारून ओनली टू बैक ट्रैक लेटर. उन्होंने ये कहा कि ये तो एक पॉलिटिकल थिएटर है. इस तरह से कहते हुए मिस्टर अनवर ने साथ ही में, जब वो लॉन्च कर रहे थे नेगोरी सेम्बलान पीएच इलेक्शन कैंपेन इन सरमबन इसी वीकेंड पर, उन्होंने इस तरह की बात करी और साथ में ये कहा दैट वी आर फोर्स्ड टू हैव एन इलेक्शन क्योंकि सो दैट पीपल कैन मेक देयर चॉइस. जी हाँ, पीएच एंड बीएन, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आर पार्टनर्स इन द फेडरल गवर्नमेंट. The two pacts also control the Negri Sembilan State Assembly, but ties on the ground have been strained since the move by the 14 UMNO assemblymen on April 27th, jahan par unhone withdraw kiya apna support for Aminuddin over his handling of a crisis involving the state monarchy. स्टेट असेंबली को उसके बाद 5 जून को डिसॉल्व कर दिया गया एंड द स्नैप पोल्स डिसाइड किए कि वो अगस्त 1 को होंगे, मोर देन 2 इयर्स बिफोर दे आर ड्यू इन नवंबर 2028. साथ ही में अनवर इब्राहिम ने यह भी कहा कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि स्नैप स्टेट इलेक्शन हो, एज देर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन. लेकिन फिर भी ये करना ही पड़ा. वेल, कभी कभी हो जाता है, कुछ कुछ करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते हैं.
4: वो दिन भी क्या दिन थे,
3: तभी हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं. On Radio Masti, taking a short break here, and of course, right after this, I'll come back with some more news. इस बार US की खबर बताती हूँ आपको. Good morning.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: Check it